0: police, police, police, police, police, police, bag.
1: My inspector Priya. तिमार लपकने को लाई कई समय देखी यही गांव में यही गांव को गांव ले बाहर बसी रहते तब अल्लाह तुम्हारे नायक समझे को थे तब ऐसा खल नायक पुन निस्किन बाय
2: मलबन तिमला लक्ष्मी सोचे को थे तिमी तो माँ दुर्गा निस्कियो डायलॉग बाजी पड़ी भायो टैक्टुक पारे र काम सकिया ना कहिए तलियो बाय द वे डीएसपी सपूत
3: हजुर छरीबा
1: त्यो चेलीबेटी बेसना त हामीले पक्र्यौ नि
3: हो राम्रो भयो त्यस्तालाई त पत्ता फर्कनु पर्छ
1: अनि आमा कहाँ हुनुहुन्छ
3: ए तेरो आमा काउली बेच्ने गएछ

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5359 7053 98 550 7071 र 98 550 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4 93 580 98 550 26 440
3: It's 1 o'clock. अहिले 1 बजेको छ।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 0855 7070 53।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सभी रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4493 580 र 98 5506 4440।
3: It's 2 o'clock. अहिले 2 बजेको छ।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5359 53 98 550 77 061 र 98 550 77 53
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 26 440
3: It's 3 o'clock. अहिले 3 बजे को साथ.
4: अहिले दिउँसो को 3 बज्यो.
5: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो.
4: राष्ट्र को शान किसान.
5: A complete piping solutions.